สิอารุณังลูกิบางบูเจบีสุวิกเป็นสามพรีโบ

สีราอีสุคริงสีนอนดูลูเบงอารามีบางหลังมิงปู

0: Murun ipakedi.
1: Lapona pornali tum lunbari majai mek ang deng long pen lunjir arjik long tanglo lagi akashwani dipu non studio agore por por phai troxy playing dog dog lo la se apor ke chok pen pulo tang de delhi ban ka bache tak hindi alam pen birta arjik long phitpo adun thu por phai troxy ra minute phor por playing pulo tang de delhi ban ka bache tak le thot english alam pen birta arjik long phitpo tang de non arjik lo nang delhi ban ka bache tak
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर इका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगांस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार

बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी। गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 1000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आप

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
3: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
4: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2000

0: 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और NEET PG 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम

0: विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज़्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इसराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण, 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल। रिकॉर्ड शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइयां ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर। मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

वर्षाकी मी चेन्दुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग आसन आसन का पचे थे वर्षाईदो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथी के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन अलम पचे थांग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग नंगहुमरी इक्तामी मोबाइल पेंजों से चिंकी इक ची पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

0: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
1: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: lapana pornale tum akashwani diphua jai mek angdeng longpen ason ason rj long tanglo lake akashwani diphu non studio akhuria por por phai kri sira minithom ke plank tanglo lase vivid mumbai ban ka pachatak vivid bharatiya jai mek angdeng longpen ason ason jai mek nangli tum rj longpo
1: आप जब उनको प्रेज करते हैं ना, व्हाट इज रिवॉर्डेड गेट्स रिपीटेड. आप उसको रिवॉर्ड करते नहीं हो और सोचते हो कि टेकन फॉर ग्रांटेड. ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट.
2: मतलब बच्चों के सामने उनकी प्रशंसा बहुत जरूरी है. हर घर में एक दूसरे की प्रशंसा जरूरी है, लेकिन बच्चों की प्रशंसा खास तौर से जरूरी है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए. अब हम नैन जी से जानना चाहते हैं कि जिस तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं कॉलेजेस में, तो एनसीईआरटी की बुक्स की क्या अहमियत होती है, और साथ में ये भी बताइए कि इम्तिहान में के पहले किस तरह से छात्र रिवीजन करें कि वो अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर सके, मतलब कि मार्क्स उनके अच्छे आ सके.
3: अभी बच्चे जो भी संस्थान में जाते हैं पढ़ने, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे उनके एग्जाम्स होते हैं और वो अपलिफ्टमेंट होता ही है, पहले एक चैप्टर पे, बाद में दो चैप्टर पे, बाद में चार चैप्टर पे. ना एज फार एज एनसीईआरटी बुक्स आर कंसर्न, जब आप कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, चाहे वो

0: नीट हो या JEE मेन्स हो, उसका बेसिक बुक ही NCERT है।
1: जी
0: लेकिन NCERT बुक में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसकी एक एक लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक लाइन में से शायद 10 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो उसका डीप स्टडीज तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। NCERT बुक्स इनफैक्ट आई वुड से बहुत, मतलब बहुत नॉलेजेबल लोगों ने लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे बुक्स हैं। बट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, यू नीड टू प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ MCQs, द फुल फॉर्म इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस।
1: जी
0: तो आप NCERT बुक को सिर्फ बेस नहीं बना सकते हैं, दिस इज जस्ट अ रीडिंग बुक। उसके बाद में एप्लीकेशन जब आता है तब आपको ज्यादा से ज्यादा MCQs सॉल्व करने चाहिए। तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप अपना काम डिवाइड कर लें।
1: जी
0: अगर आपको फिजिक्स के 300 क्वेश्चंस पढ़ने हैं तो आप रोज के 40-50 कीजिए। देखिए वैसे भी आपके पास टाइम लिमिट है, आप 1 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते फिजिक्स के एक MCQ में। अगर आप JEE के लिए प्रिपेयर करते हो 2 मिनट से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करते हैं
1: जी
0: हमेशा टाइमर लेके बैठें, और वो टाइमर कभी भी मोबाइल फ़ोन नहीं होना चाहिए,
1: ओ
0: वो सिर्फ वॉल क्लॉक या तो रिस्ट वॉच होना चाहिए। एज टीचर्स हम लोग भी जब क्लास में एंट्री करते हैं, आप कभी भी हमें फ़ोन करिए 723 या तो 724, हम रिलीजियसली फ़ोन को हाथ नहीं लगाते।
1: जी
0: बिकॉज सीधी सी बात है, बच्चा जो देखेगा वो करेगा। आज मैं बच्चों को बोलता हूँ मोबाइल फ़ोन यूज़ मत करो, तो सामने सबसे पहले हमें वो बंद करना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: तो जब आपके बच्चे आपके सामने पढ़ते हैं, आप खुद अपना मोबाइल फ़ोन भी दूर रख दीजिए, टीवी भी बंद कर दीजिए। जब अभी डैडी खुद IPL देखते हैं और बाद में बच्चे को बोलते हैं तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है, तुम पढ़ाई करो, तो
1: बिल्कुल
0: बच्चा एक अजीब तरीके से आपको देख के आपके अपने रूम में चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे क्वेश्चन मार्क होता है, पापा व्हाट आर यू डूइंग।
1: खुद तो
0: सो
1: देख
0: सबसे
1: रहे
0: पहले
1: हैं।
0: मैं बार बार काउंसलर मैडम से इत्तफाक रखूंगा कि योर किड्स फॉलो यू, सी यू आर देयर रोल मॉडल्स। तो NCERT बुक तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। लेकिन अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आपके पास आपके टीचर्स जो भी अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं उनको पता ही होता है कि MCQ उसके कौन से बुक्स अच्छे हैं। आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं,
1: जी
0: 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं, मान लीजिए आपके पास 6 घंटे बचते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री और 2 घंटे मैथ्स करें। हो सकता है आपको मैथ्स वास्ट है उसके लिए 2.5 घंटा लगे, तो आप उसको 2.5 घंटा दे दीजिए, केमिस्ट्री को 1.5 घंटा दे दीजिए, फिजिक्स को 2 घंटा दे दीजिए। वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, इट इज अ वेरिएबल थिंग।
1: जी
0: लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन है इंजीनियरिंग कॉलेज का हो चाहे मेडिकल कॉलेज का हो, आपका एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है। सो MCQs की प्रैक्टिस रोज करें, और अगर आप उसको रोज का रूटीन बना लेंगे, अब जैसे हम रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज लंच लेते हैं, रोज नहाते हैं। मैं स्टूडेंट्स को कभी कभी ये बोलता हूं कि ये आजकल के जमाने में आया हुआ ये वर्ड है स्ट्रेस। यहाँ पे जितने भी नॉलेजेबल लोग
1: बिल्कुल
0: मेरे
1: सही
0: साथ में
1: बात है।
0: पैनल पे बैठे हुए हैं, 30 साल पहले मैंने ये वर्ड कभी नहीं सुना
1: सही
0: था।
1: बात है।
0: मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में ये वर्ड सुना था, देर इज अ चैप्टर इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। आजकल हम लोग जो भी डॉक्टर के पास जाते हैं, कुछ भी हो आपके हाथ में छाले आ गए स्ट्रेस की वजह से, आपको हार्ट अटैक, अभी हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन स्ट्रोक आ रहा है, वो स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, समझ में आ रहा है। आज अभी मुझे बहुत ज्यादा पसीन होता है, नहीं, स्ट्रेस की वजह, अरे बाबा
1: पेट की
0: मेरा इंटरनल हीट
1: समस्या
0: उतना है।
1: वो भी
0: तो
1: स्ट्रेस।
0: स्ट्रेस वॉज नेवर अ वर्ड 30 ईयर्स बैक, 25 ईयर्स बैक, 20 ईयर्स बैक। अभी मुझे लग रहा है ये वर्ड इतना ज्यादा रूटीन हो चुका है, हो सकता है मेडिकल एक्सपर्ट शायद ये वर्ड यूज करते हो और वो टाइम पे शायद ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ हो। मुझे सिर्फ यंग जनरेशन को इतना ही बोलना है कि जब कोई चीज नई आती है, कोई नई चीज इन्वेंट होती है, हम लोग पहले लैंडलाइन फोन पे थे, फिर पेजर आया, फिर मोबाइल फोन आया, तो हम लोग वो नई नई टेक्नोलॉजी सीखते गए कि नहीं? तो जैसे ही आप टेक्नोलॉजी नई आती है तो नेचुरली उसके बारे में सीखना भी होता है। इंजीनियर्स लोग सीखते हैं, वो सब डिजाइन करते हैं, तो आपको किस बात का स्ट्रेस है? आज बच्चा PCB ले चाहे PCM ले, उसको फिजिक्स करना ही करना है, चाहे उसको पसंद हो ना हो। एक सिंपल सी बात है, आपके आजू बाजू में जितना भी फिजिकल वर्ल्ड है, चाहे आप वो गाड़ी ले लो, चाहे मोबाइल ले लो, जितनी भी चीजें ले लो, वो सब में फिजिक्स है। वो सारी चीजें आपको यूज करना पसंद है, लेकिन वो चीजों के बारे में आपको सीखना नहीं है। मतलब एक टायर पंक्चर हो जाएगा तो आप मैकेनिक को ढूंढोगे, आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक जन इंजीनियर होना चाहिए या तो डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अगर आपने साइंस लिया है तो अपनी इच्छा से लिया है, उसको रिस्पेक्ट दीजिए, उसके लिए हार्डवर्क कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस आपके पास आना ही है।

0: आपने ऐसा सब्जेक्ट लिया कि जिसकी बहुत डिमांड है और उसकी डिमांड कभी नहीं जाने वाली है, आप बस थोड़ा उसके पीछे हार्डवर्क डालो और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा आपको।
1: यहाँ दर्शकों में भावना इस समय बैठी हैं और तो वो कुछ पूछना चाहती हैं।
2: मैं भावना हूँ, यहाँ पे इंजीनियर हूँ। तो अब दिक्कत ये हो रही है मेरे साथ, जैसे बोलते हैं कि जैसे पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, तो दोनों बच्चों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो बड़ा बच्चा था वो बचपन से काफी ब्रिलियंट रहा, वो छोटा थोड़ा सा उससे एवरेज है। उसके मन में ये आ जाता है कि भैया ने इतना किया है तो पेरेंट्स की कुछ एक्सपेक्टेशन मेरे से उतनी इक्वली होगी, जबकि हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसके लिए बिल्कुल लिबरल हूँ, लेकिन वो अपने आप से जो प्रेशर ले लेता है, सिबलिंग प्रेशर को कैसे डील करें, और बच्चा खुद से ले रहा है स्ट्रेस।
3: ऐसे सिचुएशन में हम बच्चे को बुला के पूछते हैं कि पेरेंटल प्रेशर है या नहीं, क्योंकि आप समझते हैं कि प्रेशर नहीं है और मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अक्सर ऐसे होता है ना कि कम्युनिकेशन वाइज वी डोंट शो द प्रेशर, बट हमारा जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें वो प्रेशर दिखाई देता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि सब तरीके से आपने पॉजिटिव कम्युनिकेट भी किया हो, लेकिन बच्चे के अंदर वो शायद एक फीलिंग आ जाती है, इट्स वेरी नॉर्मल, तो कुछ समय तक वो रहने वाला है। सो आई वुड से एज लॉन्ग एज इट इज नॉट, कोई हार्म नहीं हो रहा है उसको, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और वो अपना नॉर्मल सब कुछ कर रहा है, मतलब ये कभी कभार वो जर अगर बात बता भी देता है तो उस समय आपको उसे हैंडल करना है ये बताकर कि सब सेम नहीं होते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं जहाँ बच्चे अलग अलग हैं लेकिन उन्होंने अलग अलग अपने फील्ड में शाइन किया हो। हम काउंसलिंग में कहते हैं कि इसको किड ग्लव्स के साथ हैंडल करना है। किड ग्लव्स मतलब इसके प्रति थोड़ा और ध्यान देना होगा, या आउटशाइन करने के लिए कुछ ऐसा गलत कदम ना उठाए। समटाइम्स इट हैपन्स कि अटेंशन सीक करने के लिए या आपका अटेंशन ज्यादा मिले उसकी तरफ, इस तरह से भी आप कुछ व्यवहार कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर पेरेंट्स जब बात कोई आता है ना बाहर से और आप उन्हें इंट्रोड्यूस करते हैं या उनके जो अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो वो यंग पर्सन जो बैठा है ना वो सुनता है, लेकिन हम भूल जाते हैं वो, क्योंकि हम फ्लो फ्लो में बहुत कुछ बोल जाते हैं। इसने ये किया, उसने ये किया, उसको ट्रॉफी मिल गई, अभी इसने ये किया, और उसका कुछ नहीं बोलते हम, तो वो समझ जाता है। ये माइंड ऐसा है, लेकिन एज अ पेरेंट आई वुड से ये दिमाग में रखना जरूरी है कि इफ ही इज नॉट देयर और आपने उसे प्रेज किया किसी के सामने, दैट्स फाइन
1: जी।
3: लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बार बार कि जब वो छोटा है वहां पर आप क्या बोलती हो और किसके साथ बात कर रही है।
1: जी जी,
3: ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
1: मुंबई का एक कॉलेज है नरसिम्हाजी कॉलेज, जिसकी प्रोफेसर ममता झा यहाँ आई हैं, वो कुछ पूछना चाहती हैं।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता झा पिछले 28 वर्षों से नरसिम्हाजी कॉलेज में हिंदी विषय पढ़ाती हूँ। तो मेरा ये पूछना है आपसे सुमति जी से कि जो बच्चा 11वीं कक्षा में या 12वीं कक्षा में होता है, जो पहले दृश्य में नहीं देखती थी, आजकल बहुत फिजिकल लड़ाई करने लगे हैं,
1: हिंसात्मक
4: हो गए हैं बहुत ज्यादा, और हमारे सामने लड़ते होते हैं और सरकार का नियम है कि हम बच्चों को हाथ नहीं लगा सकते हैं, तो उस वक्त हमें लगता है कि हम क्या करें, हम अपने आप को इतना असहाय महसूस करते हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एक तो ये प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न ये भी है कि वो जो बच्चा, जैसे आपने कहा कि सबब से आता है या हमारे यहाँ विरार और वहां से आते हैं बच्चे, तो वो बहुत ही अकेलेपन में अपना पूरा 12th निकालता है और फिर डिसाइड करता है कि अब मुझे नहीं आना है, तो उस बच्चे के साथ हम कभी समझ भी पाते हैं, क्योंकि क्लास में 120 बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसमें 6 महीना 7 महीना लग जाता है उस अकेले बच्चे को ढूंढने में भी, तो ढूंढकर जब तक होता है तब तक वो शायद कॉलेज आना भी बंद कर देता है या अपने आप में घुटकर रह जाता है। तो एक शिक्षक के नाते मैं उसकी उसको उसकी परेशानी को कैसे दूर कर सकती हूँ।
3: आजकल जो ये फिजिकल वायलेंस दिखता है, ये आपको शायद बहुत, मतलब रोड पे भी दिखेगा आपको, रोड रेज जिसे कहते हैं, इनका टेम्परमेंट बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बिकॉज इनके साथ पॉसिबली ये है कि वट एवर मैंने डिसाइड किया वही होना चाहिए, ये शेयर करना नहीं चाहते या

0: फिर टीम वर्क में पार्ट लेना नहीं चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इफ यू एक्चुअली सी विदाउट रीजन किसी ने अटैक किया हो, आप पूछेंगे तो सही कि बात क्या थी। अगर आपको लगता है कि बहुत मामूली सी बात थी और इन्होंने बहुत ज्यादा इंटेंस वायलेंटली अटैक किया है, आई थिंक दैट कॉल्स फॉर अटेंशन टू सेंड टू द काउंसिलर, कि वहां पर फिर वो उन्हें संभाल लेते हैं कि किस तरह से अपने टेम्पर को कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से वो लोगों के साथ बैठकर भी वो अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और आपका दूसरा सवाल कि अकेले जो बैठते हैं, ये मैंने भी देखा है। इनफैक्ट वो आते हैं मेरे पास एंड दे फील कि उन्होंने ये गलत डिसीशन लिया इस कॉलेज में आकर। ऐसे मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो सेकेंड या थर्ड ईयर पर चेंज करके निकल गए हैं। अगर वो खुद चेंज हो सकता है, और विच इज वेरी डिफिकल्ट, नहीं तो यहाँ पे प्रिंसिपल, कॉलेज, इन सब का हेल्प लेकर उसको हेल्प करना जरूरी है।
1: अभी हमने देखा है कि बच्चों में 11, 12th के स्टूडेंट्स विपिंग करते हैं, या विपिंग ही कहते हैं उसको जो इलेक्ट्रिक वाला है। और फिर सडनली चूंकि सब जगह आप कैमरे लगे होते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो वो उससे पता चलता है। तो उसके बारे में हम कितनी भी काउंसलिंग करें, काउंसलर्स के पास भेजें, फिर भी एक ना एक दो ऐसे मिलते हैं। तो उसके लिए क्या अलग से काउंसलिंग सेशन रखना चाहिए, या किस प्रकार से, क्योंकि उस इतनी कच्ची उम्र में अगर वो इस जाल में फंस रहे हैं तो आगे उनके सेहत पे, मानसिक, आर्थिक और हर तरह के सेहत पे असर पड़ सकता है।
0: मतलब यही कॉलेजेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं जहां टीचर्स ने पिकअप किया, प्रोफेसर ने पिकअप किया कि ये क्लास में सुबह सुबह सोते रहता है, लेकिन जब हम उनसे बात करते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये सोता नहीं है, ही इज अंडर रिजल्ट ऑफ ड्रग्स। ये मैंने ऑलरेडी फेस किया है, और इनको काउंसलिंग और डी एडिक्शन सेंटर्स में भेजकर मदद लेना जरूरी है, क्योंकि इट इज अ वेरी सीरियस इश्यू। क्योंकि इनका जो सप्लायर जो होता है उसको पकड़ना इजी नहीं है, और ये
1: बिल्कुल
0: फिर नारकोटिक सेल तक जाता है, और कॉलेजेस चाहते नहीं हैं कि उनका कॉलेज नारकोटिक सेल की लिस्ट में आ जाए, तो ये पेपर में आता है, तो ये मल्टीपल इश्यूज हो जाते हैं। सो वी क्वाइटली सेंड देम टू डी एडिक्शन सेंटर, वहां पे वो सेशंस लेते हैं, उनका ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि बच्चा तो कहेगा कि मैं लेता नहीं हूं, द ओनली वे टू नो इज फ्रॉम ब्लड टेस्ट। तो ऐसे केसेस बहुत आए हैं जिसको हमने डी एडिक्शन सेंटर कोकिलाबेन हॉस्पिटल में है,
1: जी
0: और
1: जी
0: वहां वो डेफिनेटली उसको हैंडल करते हैं।
1: बहुत सही बात आपने कही। दर्शकों में कुछ छात्र बैठे हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं।
2: मेरा
1: जी
2: नाम अक्षर है, मैं इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहा हूँ, 12th में हूँ, जेई मेंस की प्रेपरेशन कर रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन, बच्चे कई बार ठीक से फोकस नहीं कर पाते और पढ़ाई का बोझ जमा होते जाता है, फ्यूचर की फिक्र भी सताती है, तो ऐसे में इससे कैसे डील करना चाहिए?
0: मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर आप एक हॉलिडे पे जाते हो तो आप क्या तैयारी करते हो? ऐसे ही चले जाते हो बैग उठाकर, या फिर कुछ, देर इज सम प्लानिंग? कितना प्लानिंग करते हो आप? वहां वेदर क्या होगा? आप चैट जीपीटी पे जाकर 10 सवाल पूछते हो, अम्ब्रेला की जरूरत है, स्वेटर पहनना है, डबल लेयर पहनना है, कितना पूछते हैं। बट वेन इट कम्स टू स्टडीज, वी डोंट वॉन्ट टू प्लान। तो जैसे सर ने भी पहले बताया कि हर टास्क को छोटे छोटे टास्क में अगर डिवाइड कर दिया तो बहुत इजी हो जाता है ना? कुछ तैयारियां हम पहले से ही कर चुके होते तो आई थिंक उस दिन हमें बहुत ये बोझ नहीं लगता, स्ट्रेस नहीं लगता है। और हम सबको करना होता है ये, शायद वो ममता जी हो या मैं हूं
1: बिल्कुल
0: या नयन सर हो, वो भी पढ़ाने आते हैं तो यूं ही उठ के आते नहीं है सुबह, वो सोचते हैं आज मुझे क्या पढ़ाना है,
1: बिल्कुल
0: कितना वक्त पढ़ाना है, कौन सी एक्टिविटी करानी है, इन स्पाइट ऑफ सो मेनी इयर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी जो भी एक्टिविटी है उसको आप डिवाइड कर दो, एक टू डू जर्नल रखो,
2: यस
0: ये जो फोन है ना इसको एक तरफ रख के एक जर्नल ही रखो, इट वर्क्स वंडर्स, इट विल बी अ गेम
1: जरूरी है
0: चेंजर इन योर लाइफ। सुबह उठ के टू डू थिंग्स लिखना शुरू कर दो। स्टीव जॉब्स करते थे, व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग सब कुछ प्लान होना जरूरी है। बट एक बात याद रखना, हर चीज प्लान के मुताबिक चले ये जरूरी नहीं है। तो आपके पास ये भी माइंडसेट होना चाहिए कि कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर लूंगा मैं। बट आपके पास एक प्लान हो तो आप बहुत अच्छी तरह से उसको निभा सकते हैं, तो स्ट्रेस नहीं लगेगा आपको।

0: अक्षर को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि अक्षर अभी आपके पास ये एज में सिर्फ पढ़ाई और शायद एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ भी नहीं है। हम जब बड़े लोग जब फोन यूज करते हैं तो फोन का एक अच्छा यूज भी है। इसमें हम लोग नोट्स लिख के रखते हैं कि आज आज मैं 7 बजे
1: क्या
0: क्या
1: बात है।
0: करूंगा, 9 बजे क्या करूंगा, अभी से 3 महीने बाद मेरा कौन सा चैप्टर चलेगा मुझे अभी से पता है। क्योंकि मैं तो अपने घर में खुद सबसे बड़ा हूं, मैं तो अपने मम्मी पापा को पूछ नहीं सकता हूं, तो आई हैव टू बी माई ओन एडवाइजर। तो जैसे मैडम ने बताया, हम लोग ये चीजें मोबाइल में स्टोर करते हैं नोट्स करके। मेरे में एक फंक्शन है जिसमें आज के बाद 6 महीने तक की प्लानिंग है। और सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, खुद अपने आप को मोटिवेट करना सीखो। मैं मेरा जब कुछ काम हो जाता है ना तो मैं उसकी बाजू में स्माइली करता हूँ कि नैन वेल डन।
1: वाह क्या
0: वैसे
1: बात
0: आप
1: है।
0: अपने स्टडी टेबल पे एक बनाओ कि आज मुझे ये होमवर्क करना है, जैसे आपका होमवर्क खत्म हो जाता है स्माइली बनाओ वहां पे, तो
1: वाह
0: वो एक सेल्फ मोटिवेशन है। राइट, यू हैव टू जस्ट स्टे मोटिवेटेड। घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, स्टूडेंट्स को ये मैं खास बोलूंगा, घर पे एक स्टडी बोर्ड बनाओ, 4 टास्क लिख के रखो, आज फिजिक्स का इतना होमवर्क है, केमिस्ट्री का इतना है, मैथ्स का इतना है, हो गया, अपने आप को स्माइली दो।
1: अरे
0: हो
1: वाह।
0: सके तब तक उसको स्पिल ओवर मत होने दो, डोंट अलाउ इट टू गो टू द नेक्स्ट डे, बिकॉज आपके पास नेक्स्ट डे भी नया होमवर्क आने वाला है। हर दिन नया उगता है, हर दिन कुछ ना कुछ आपको काम है ही। एंड मेक योर सेल्फ सो स्ट्रांग। मैं बच्चों को फिजिक्स की लैंग्वेज में ये बोलता हूँ कि बी अ मैग्नेट सो दैट द थिंग्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, डोंट बी अ मैग्नेटिक मटीरियल कि यू आर अट्रैक्टेड बाई स्टूपिड पैटी थिंग्स इन लाइफ।
1: वाह बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी बात है। तेजश्री जी कुछ कहना चाहती हैं?
2: मेरी बेटी है, 6 साल की है। सो मतलब आज अभी तक जो डिस्कशन चल रहा था वो काफी बड़े बच्चों के लिए था ये सब, बट इट्स नॉट रिलेटेड टू स्टडीज और इट्स नॉट रिलेटेड टू करियर और समथिंग। ये जो अभी उसका जो एज है ना, कि बहुत सारे सवाल, और ऐसे सवाल जो हमको अनकंफर्टेबल करते हैं, या उसको जब तक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं है वो कन्विंस नहीं होती है, या ये फेज में मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं उससे झूठ बहुत बोल रही हूँ।
1: ओहो
2: फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी उसको डराना है तो मैंने पहले तो मैंने उसको ऐसे ग्रो अप किया था कि भूत होता नहीं है लाइफ में। वो मैंने उसको इतना अच्छा सिखा के रखा था कि अब मुझे उसको सुलाने के लिए बताना पड़ता है कि है भूत। तो मतलब दिस हैज बिकम अ कॉम्प्लेक्स थिंग विद मी टू हर, क्योंकि क्या होता है, कम्युनिकेशन इतना हम दोनों में बढ़ गया है ना। वो 6 साल की है तो मैं सच में परेशान होती हूँ उसके क्वेश्चंस को लेके। मरते हैं मतलब क्या है, या मतलब बहुत सारे सवाल। तो उसमें क्या होता है, हर चीज हम उसको उनको उतनी नहीं बता सकते, फिर भी मैं बताती हूँ। जैसे उसको लगता है कि उसको लगता है पुलिस ही नहीं होना चाहिए, मतलब पुलिस दिखने नहीं चाहिए, क्योंकि उनको देख के उसको डर लगता है। कंफर्टेबल कैसे होना चाहिए ये रिलेशनशिप?
1: आप आई वुड से लकी हैं कि वो इतना बात करती है। बहुत
0: क्या
1: सारे
0: बात है,
1: पेरेंट्स आते हैं कहते हैं हमारी बच्ची तो बात ही नहीं करती है, फिर पूछते भी नहीं है,
0: वो ज्यादा मुश्किल है।
1: वो ज्यादा मुश्किल है। सो दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स जहां बच्चा बहुत कुछ जानना चाहता है और जानना चाहती है। तो मैं कहूंगी यू आर वेरी लकी, सो डोंट फील अनहैप्पी। बात रही कि आप क्या जवाब देंगे, मेरा कहना ये है कि ऑनेस्ट आंसर्स देना चाहिए। भूत है ये डराना ये सही नहीं है,
2: बिल्कुल, वो
1: क्योंकि
2: मुझे भी
1: आपने
2: लगता
1: देखा
2: है।
1: नहीं है भूत
2: हाँ
1: को, तो आप कैसे कह सकते हो भूत है ना।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: सो अब कितना कहना है ये आपकी विजडम और इंटेलिजेंस पर निर्धारित है। लेकिन जहां तक जवाब देने का सवाल है, आई वुड से बी ऑनेस्ट,
2: ऑनेस्ट।
1: बट इतना भी डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है जो उसके ऊपर से जाए। उतना ही दो जितना वो समझ सके। एंड ट्रूथफुल आंसर्स आर बेस्ट आंसर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप सही जवाब दो एंड बी हैप्पी दैट दे आर क्वेश्चनिंग। वेरी गुड।
0: बिल्कुल।
3: मैं जयंत पात्रिकर, वरिष्ठ उद्घोषक, विविध भारती। अभी जो बात चल रही थी उससे से जुड़ा एक सवाल है कि पिछले 20-25 सालों में एक शब्द कॉइन हुआ है, कॉन्शियस पेरेंटिंग, तो ये कहां तक कारगर सिद्ध हुआ है? हर बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग तरह से होती है।
1: डेफिनेटली,
3: हाँ, तो उसकी
1: इसलिए
3: उनके पेरेंट्स की
1: उसकी
3: काउंसलिंग एक जैसे कैसे होगी?
1: एक जैसे पेरेंट्स की काउंसलिंग करते नहीं है, वन साइज डजंट फिट ऑल, हम कस्टमाइज करते हैं।
3: अच्छा, हाँ
1: मतलब पेरेंट्स को पहले पूछते हैं कि
3: जी जी
1: उनके घर पर कौन कौन है,
3: हाँ
1: वो कहाँ तक किस माहौल में रहते हैं, कौन सा मतलब व्हाट प्रोफेशन आर दे इन,
3: जी
1: तो एक अंदाजा आ जाता है कि इसकी समझ कितनी है।
3: ओके
1: और फिर जब एक दो सेशन होते हैं तो हमें उनके बिलीफ सिस्टम के बारे में भी

0: मजा आ जाती है। और इन दोनों के बीच की इक्वेशन क्या है ये जानना भी जरूरी है। आई कांट क्रिएट अ वॉर बिटवीन हस्बैंड वाइफ आफ्टर काउंसलिंग सेशन,
1: जी ये बहुत सही बात कही आपने,
0: दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं चाहती हूँ वो हंसते हंसते निकले और सेकेंड सेशन आए।
1: जी
0: तो माई चैलेंज इज गेटिंग देम फॉर द सेकेंड सेशन। पहले मैं सिर्फ अंदाज लगाती हूँ, दूसरे में अपना कुछ उनसे पूछती हूँ, तीसरे में उन्हीं को अकाउंटेबल बनाती हूँ कि वही सजेशन देते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है आपका लाइफस्टाइल क्या है, उसके बाद सो इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट ऑफ एवरीथिंग।
1: जी एक नन्ही छात्रा आई है, अपना नाम बताइए बेटा।
2: नमस्ते, मेरा नाम श्रिया है। नाउ आई एम इन सिक्स स्टैंडर्ड इन सेंट रॉक्स हाई स्कूल एंड आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि जब हमारे एग्जाम्स होते हैं जो हमारे मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं जस्ट लाइक साइंस एंड हिस्ट्री, उसके जो बड़े आंसर्स रहते हैं उन्हें हम जल्द से जल्द और आसान तरीके से कैसे याद कर सकते हैं?
1: ये तो मुझे लगता है इसका आंसर नयन सर दे पाएंगे। कहिए नयन सर बताइए, आप मुश्किल में पड़ गए हमें लगता है।
3: भले आज मैं टीचर हूं लेकिन मेरे भी दो तीन नापसंदीदा सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। मुझे सिविक्स कभी पल्ले नहीं पड़ी थी, मेरी एलजिब्रा बहुत अच्छी थी, ज्योमेट्री में मेरे हमेशा 10-12 मार्क्स जाते थे, हालांकि मैं स्कूल में टॉपर था। तो ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, जब आप 10th स्टैंडर्ड के बाद अपनी करियर चूज करोगे तो आपके नापसंदीदा सब्जेक्ट्स निकल जाएंगे। एक ही सजेस्ट करूंगा कि जब आपको ऐसे क्वेश्चंस, जब मुश्किल वाले लगते कि बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ कुछ वर्ड्स आप अंडरलाइन कर लो। तो वर्ड के आगे पीछे के वर्ड्स आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, उसका जो मेन वर्ड होता है, आप जैसे कोई डेफिनेशन होती है, आपने उसका एक वर्ड दिमाग में याद रख लिया तो उसके आगे पीछे अपने आप सेंटेंस बैठता है। तो वो सारी चीजें आपकी वक्त के साथ निकल जाएगी। यू आर टू यंग सो डोंट वरी अबाउट दिस, राइट? सबसे मेन हैप्पी माइंड के साथ पढ़ो, ओके?
1: बहुत बहुत शुक्रिया नयन सर, आपने इतने अच्छे से जवाब दिया। दरअसल ये चर्चा ऐसी है, विषय ऐसा है, ऐ जिंदगी गले लगा ले, कि अंतहीन है। अब लेकिन आखिर में जो हमारी मुख्य अतिथि हैं, और अपने श्रोताओं को बता दें कि विभा जी फिल्मी दुनिया में लेखिका हैं और कुछ सीरियल्स और फिल्में भी को प्रोड्यूस की हैं और डायरेक्ट भी करने की ख्वाहिश रखती हैं। तो विभा जी अब आप माइक लीजिए और बताइए आज की चर्चा से क्या कुछ निचोड़ निकलता है।
4: विद भारती के श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी, इतना बढ़िया सृजन भारती कार्यक्रम, इतने महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा। सच कहूं तो मैं तो यहाँ बैठ के सुनते ही जाऊं, इतना अच्छा लगा, इतनी दिलचस्प बातचीत हुई है, इतना सीखने को मिला है। फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं था, मैं आज भी फिजिक्स सीखना चाहती हूँ।
1: क्या बात
4: और
1: है,
4: आपने कहा कि मैं ऑनलाइन जा जा के सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ, बट यू सेड फिजिक्स इज राइटिंग, तो अब मैं वो अप्लाई करके देखती हूँ मुझे कितना समझ आता है। डॉक्टर ओझा ने जितनी भी बातें की हैं बच्चों के विषय में, पेरेंट्स के विषय में, आई विश कि ये बात दूर दूर तक फैले, सबको समझ आए, सब सुने। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक बच्चे को टीचर ने पूछा कि तुम बड़े होके क्या बनना चाहते हो, तो उसने बच्चे ने बोला कि मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो टीचर ने बोला तुम्हें सवाल समझ नहीं आया, तो बच्चे ने बोला आपको जवाब समझ नहीं आया।
1: क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
4: तो ये मेरा नहीं है पर मैंने कहीं पढ़ा है, तो आप मेरे लिए तालियां बजा दिए, बहुत शुक्रिया। दूसरा ये कि असफल जब हमको लगता है कि हम अभी असफल हुए, तो क्या होता है कि हमको गुस्सा आता है, हम किसी को ब्लेम करना चाहते हैं, हम नाराज होते हैं। हिंसा की बात की आपने, तो ये सब होता है, नेगेटिव फीलिंग होती है, सबको ही आती है। हम भी कोई चीज हम चाहते हैं, क्योंकि हम कुछ चाह रहे हैं वो नहीं हुआ, हम सब नाराज हो जाते हैं, तो वो तो होता ही है। पर उसको अगर हम चैनलाइज कर लें, इसमें भी फिल्मी जगत का हेमा मालिनी जी ने ये किस्सा बताया था कि वो टीनेजर थी जब वो अपनी पहली फिल्म के ऑडिशन के लिए गई थी
1: जी।
4: तो उनको प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दिया और बोला कि तुम कभी हीरोइन नहीं बनोगी। इनको जब रिजेक्ट कर दिया था तो ये बहुत गुस्सा हुई थी और इन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म में तो हीरोइन बन के दिखाऊंगी, मैं इस प्रोड्यूसर को दिखाऊंगी। तो उनका जो गुस्सा है उन्होंने चैनलाइज किया पॉजिटिवली, ताकि वो किसी

0: हीरोइन बनी, और उसके बाद तो स्वप्न सुंदरी हैं आज। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता, हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो प्रोफेसर वर्मा ने जो एक बात कही कि आप इलास्टिक होइए, स्ट्रेस मत लीजिए, स्ट्रेस के पहले छोड़ना है छोड़ दीजिए, टूटने पे मत आ जाइए। पेरेंट्स को सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, दोष दिया जाए या क्रेडिट दिया जाए, डॉक्टर रोजा कह रही हैं कि पेरेंट्स का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस ऑपरेशन होता है बच्चों पे। तो मैं आखिर में एक चीज कहना चाहूंगी, मेरी एक फिल्म है जिसका डायलॉग है, फिल्म अनरिलीज्ड है अभी। भगवान को हम बोलते हैं कि आप बच्चे बनाते हैं तो साथ में एक मैनुअल क्यों नहीं बना देते
1: जी
0: कि
1: जी
0: बच्चों को कैसे पाला जाए। तो भगवान ने कहा कि हर बच्चा यूनिक होता है, अलग होता है, तो मैं अब बच्चे बनाऊं कि मैनुअल बनाऊं? तो बच्चे ने बोला कि मैंने भी भगवान से पूछा कि कम से कम बच्चों को एक मैनुअल दे दो कि माँ बाप को कैसे हैंडल किया जाए।
1: जी
0: तो भगवान ने बोला, हर बच्चे की तरह हर माँ बाप यूनिक होता है।
1: जी क्या बात
0: तो
1: है, बहुत
0: अगर
1: बढ़िया,
0: वो
1: उस पर
0: समझदार
1: तालियां।
0: हैं तो उनको सुन लो, और अगर तुम ज्यादा समझदार हो तो उनको समझ लो। तो बस यही है,
1: बहुत बहुत
0: बहुत बहुत
1: शुक्रिया विभा
0: शुक्रिया।
1: जी, अब वक्त निकाल के आप आई, अपनी फिल्मी दुनिया की तमाम व्यस्तताएं होती हैं हम समझ सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुमति जी आपका भी बहुत शुक्रिया, नयन जी आपका बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे विविध भारती की सृजनात्मक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत संपन्न हुए कार्यक्रम ऐ जिंदगी गले लगा ले, इसके संपादित अंश। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी थे प्रोफेसर नयन वर्मा, समुपदेशक एवं मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक डॉक्टर सुमति ओझा और फिल्म लेखिका विभा सिंह। इस कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया था ममता सिंह ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का विविधा कार्यक्रम संपन्न होता है।
3: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में होंगे समाचार, कीजिए इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना ही इस अभियान का उद्देश्य है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह के इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माय भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों और 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे। अभियान के अंतर्गत हर रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश

परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की। बैठक के दौरान परीक्षा का सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वो अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे।

0: एमएस और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा रखें। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 4 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात करेंगे, साथ ही विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली में आयोजित एक व्यापार मंच में भी भाग लेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार और निवेश समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से ओडिशा के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्त पानी में शैक्षिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति कल कटक में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगी। मंगलवार को वे दक्षिण ओडिशा में तप्त पानी के पास मां कांधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। गुजरात, ओडिशा और केरल में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ओडिशा में महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उधर केरल में जारी तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंच गया। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। सर्वाधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर के साथ ही अहमदाबाद 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभाल लेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 के राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल और आज आपके साथ मैं हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे उस खास दिन के बारे में जो आज है, जिंदगी का वो खास हिस्सा जिसके साथ हंसी भी खुलकर आती है और छोटी छोटी बातें भी यादगार बन जाती हैं। कुछ दोस्त रोज मिलते हैं तो कुछ दूर रहकर भी हमेशा दिल के करीब रहते हैं। मित्रता दिवस के इस खास मौके पर आइए अपने सभी दोस्तों को एक प्यारी सी मुस्कान और ढेर सारी शुभकामनाएं दें। इसी खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं दोस्ती के रंग में रंगे कुछ बेहतरीन गीत। आगाज कर रहे हैं सुहाग फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है मोहम्मद रफी, आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह ने, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और हम बात कर रहे हैं आज दोस्ती की, दोस्ती से भरे गानों की। तो लीजिए ये अगला गीत आपको सुनवाते हैं कमलेश अवस्थी, अनवर और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल हैं लक्ष्मीकांत प्यारे।

0: दोस्ती से भरे ओतप्रोत, दोस्त और मित्रता की भावना से भरे गीत आज आप सुन रहे हैं। आइए कालखंड में थोड़ी छलांग लगाते हैं और आते हैं उस दशक में जब थोड़े नए तरीके के कुछ गीत दोस्ती को लेकर बनाए गए, जब दोस्ती की परिभाषा में भी कुछ थोड़ा बहुत बदलाव आया। लीजिए अब सुनते हैं कुछ कुछ होता है इस फिल्म का गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर की रचना, जतिन ललित का संगीत।
1: Yeah.

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत है जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई, कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आँखों में इशारा हो गया।
3: और आइए अब विविध भारती पर सुनते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम दिल चाहता है। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाजों में ये गीत है। बोल जावेद अख्तर के शंकर एहसान लॉय की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं विशाल ददलानी की आवाज में दोस्ताना फिल्म का गीत। अन्विता दत्त गुप्तन ने इसे लिखा है, विशाल शेखर का संगीत।

0: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: और आइए अब आपको सुनवाते हैं शांतनु मोइत्रा के संगीत निर्देशन में स्वानन किरकिरे की लिखी ये रचना। सोनू निगम ने इसे स्वर दिया है और फिल्म का नाम 3 इडियट्स।

0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
0: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस संदेश से पहले आपने सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, इस फिल्म का गीत आवाजें थी डोमिनिक सेरेजो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सेरेजो की। आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत कॉकटेल फिल्म से। नीरज श्रीधर और कविता सेठ ने इसे आवाजें दी हैं। इरशाद कामिल की रचना है, प्रीतम का संगीत।

तो साथियों, आज का ये दोस्ती से भरे गीतों का सफर आपको कैसा लगा हमें बताइएगा। अपनी पसंद आपकी क्या थी और कैसा आपको ये पूरा प्रोग्राम लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ नेहा अगरकर देसाई को कार्यक्रम यादों की महफिल से दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हमारा अगला कार्यक्रम सुरीला सफर होगा थोड़ी ही देर में, कीजिए इंतजार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। स्वीकार कीजिए नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपसे एक इबारत के साथ मिलते हैं और आपको उन इबारतों से कुछ शब्द चुनने होते हैं। जी हाँ, वही शब्द जिनसे हम गाने सुनवाने वाले हैं उनके कयास आपको लगाने होते हैं।

तो चलिए जुड़ जाइए हमसे फेसबुक पर, ताकि आप और हम कमेंट्स के जरिए आपसे संपर्क कर सकें और एक दूसरे की बातें जान सकें। हाँ हाँ, इबारत से जुड़ी बातें। कई श्रोताओं ने इस कौन से गीत बजने वाले हैं इस कार्यक्रम में उसका अंदाजा लगा लिया है, तो चलिए सबसे पहले हम इस इबारत को पढ़ देते हैं। तो आज की इबारत है, कलम सिर्फ लिखने का जरिया नहीं, जिम्मेदारी भी है। जो इसकी अहमियत समझते हैं वे इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करते, क्योंकि कलम का हर गलत इस्तेमाल उसकी गरिमा को थोड़ा और कम कर देता है। ये वही ताकत है जो विचारों को दिशा देती है, सच को आवाज देती है और समाज में बदलाव की नींव रखती है। इसलिए इससे निकला हर शब्द सोच समझकर संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ लिखा जाना चाहिए। याद रखिए, शब्द मिटाए जा सकते हैं लेकिन उनका असर अक्सर हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए अपनी कलम को हमेशा सत्य, सकारात्मकता और इंसानियत का साथी बनाइए। तो कौन से हो सकते हैं वो शब्द जो आज की इबारत में भी है और आज के गीतों में भी? चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम से, मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजें।

ये वही ताकत है जो विचारों को दिशा देती है, सच को आवाज देती है और समाज में बदलाव की नींव रखती है। इसलिए इससे निकला हर शब्द सोच समझकर संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ लिखा जाना चाहिए। याद रखिए, शब्द मिटाए जा सकते हैं लेकिन उनका असर अक्सर हमेशा के लिए रह जाता है। इसलिए अपनी कलम को हमेशा सत्य, सकारात्मकता और इंसानियत का साथी बनाइए। तो कौन से हो सकते हैं वो शब्द जो आज की इबारत में भी है और आज के गीतों में भी? चलिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म हम से मोहम्मद अजीज और शोभा जोशी की आवाजें, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

जी हाँ, तो आपकी टिप्पणियों की भरमार लग चुकी है और हमारी एक साथी ने लिखा है, कलम की कमाल और कलात्मकता दर्शाती इबारत काल प्रवाह के कालांतर ने काल क्रम में कलम की कौशल कृत्य को सदैव आत्मसात किया है। इसकी रोशनाई से रोशन हुई सुप्त दीपशिखा की ज्योति को ज्वाला बना ज्वालामुखी तक अंजाम देने में सक्षम है। उपदेशात्मक सकारात्मक विचारपूर्ण सृजनशीलता बोध कराती संगीतमय सफर का इंतजार रहेगा। जी हाँ, तो ये सफर शुरू हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, कलम और क्रांति एक जोड़ है जो सदियों से समाज को एक शिक्षा और ताकत देती है, आजादी देती है अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक तरीका। परंतु आजादी में अच्छे बुरे की समझ जरूरी है। जो हमें पसंद नहीं वो कलम से या जुबान से व्यक्त ना हो, ये दायित्व रहे। आज के गीतों में ये माटी, अच्छा इन्होंने गीत भी बताए हैं कि ऐसे गीत कुछ शामिल हो सकते हैं। एक साथी ने लिखा है, कलम कलम दवात वो वस्तु है जो बचपन में प्रथम कक्षा से ही नन्हे हाथों में देकर अपना भविष्य संवारने हेतु दी जाती है। कलम हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। बचपन से किताबों में पढ़ते और सुनते आए हैं कि आजादी की लड़ाई में कलम की विशेष भूमिका रही। आज भी हम अपनी बात कलम से ही लिख रहे हैं, लेकिन वो डिजिटल हो गया है। लिखने से याददाश्त अच्छी रहती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं। अच्छा हाँ, एक बात तो हम भूल ही गए कि ये जो पहला गीत आपने सुना, इस का जो शब्द था जो हमारी आज की इबारत में भी था, वो था कलम। और आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं, बताइएगा कौन सा शब्द है। अनपढ़ फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खां ने इसे लिखा है, मदन मोहन का संगीत।

शायद इस शब्द का कयास लगाना थोड़ा सा जटिल महसूस हुआ होगा, अगर नहीं हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पे शब्द था समझा। जी हाँ, इबारत की लाइन है जो इसकी अहमियत समझते हैं, तो समझते से हमने लिया है समझ ये शब्द, और समझा इस गीत में शब्द शामिल था। और हमारे कई श्रोताओं ने लिखा है कि उनका पहला गीत शामिल हो चुका है। एक साथी लिखते हैं, शुरुआत में जब हम छोटे थे तब स्लेट और चौक से लिखना सीखते थे, फिर कॉपी और पेंसिल से लिखना शुरू किया, जब गलत होता था तो रबर से मिटा लिया करते थे, क्लास 6 से पेन मिला करता था, वो भी स्याही वाला, स्याही खत्म होने पर फिर से स्याही भर लेते थे। वहीं एक साथी ने लिखा है, बोला हुआ भुलाया जा सकता है पर लिखा हुआ मिटाया नहीं जा सकता। एक साथी लिखते हैं, कलम की ताकत का सीधा और मुख्य अर्थ वैचारिक क्रांति, सामाजिक सुधार और अज्ञानता के खिलाफ आवाज उठाना है। ये शाश्वत सत्य को रेखांकित करता है कि इतिहास गवाह है कि जो काम बड़ी बड़ी सेनाएं या तलवारें नहीं कर पाई, वो काम एक लेखक पत्रकार की कलम ने कर दिखाया है। कलम की ताकत असीमित है, लेकिन इसका महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि इसे चलाने वाले का उद्देश्य क्या है। यदि कलम का उपयोग सकारात्मकता, न्याय और सत्य के लिए किया जाए तो ये समाज के लिए वरदान है, लेकिन यदि इसका उपयोग झूठी अफवाहें या नफरत फैलाने के लिए हो तो ये विनाशकारी भी हो सकती है। और इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। शब्द जरूर पहचानिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा। पतंगा फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज, इंदिवर के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और साथियों, जैसा कि इस संदेश से पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था वही जो आप सभी ने सही पहचाना है, थोड़ा। तो थोड़ा शब्द हमारी इबारत में भी शामिल था। और कई लोगों ने लिखा है पिछले कुछ गीत को लेकर कि इसमें तो कई सारे शब्द हैं। तो शब्द तो कई सारे हैं, लेकिन हमारी इबारत से कौन सा शब्द जुड़ता है वो आपको पहचान कर बताना है। तो अब आप कयास लगाते रहें और हम आपको गीत सुनवाते रहेंगे। एक साथी ने लिखा है, कलम तलवार से भी ज्यादा तेज होती है, सोच बदल देती है, एक लाइन किसी का दिन बना सकती है और एक लाइन किसी की जिंदगी भी, इतिहास लिखती है, बड़े बड़े आंदोलन, क्रांति, संविधान सब कागज और कलम से शुरू हुए, दिल जोड़ती है, चिट्ठी, कविता, कहानी, दूर बैठे लोग भी कलम से करीब आ जाते हैं, सच बोलती है, जब आवाज दब जाए तब भी कलम सच लिखती रहती है। तो इसी तरह जो कलम का काम है वो बड़ा अनोखा होता है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे देश में जितने भी साहित्यकार हुए हैं उन्होंने हमें अपनी कलम के जरिए

बहुत अच्छी शिक्षा दी है। अगर उनकी कलम में कहीं चूक हो गई होती तो शिक्षा का अर्थ ही शायद अर्थ न रहता। पर चाहे लेखन कैसा भी हो, सार्थक होना चाहिए। चाहे कविता हो, साहित्य हो, गीत हो, चाहे प्रेम पत्र ही क्यों ना हो। अगर कलम में ताकत हो, अर्थात कहीं कोई खामियां ना हो, तो ये अच्छा रहता है। इन्होंने और भी कुछ गीतों के भी इन्होंने सुझाव दिए हैं कि ये गीत आज हो सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई गीत आज बजने वाला है। नदिया के पार इस फिल्म से सुनिए ये गीत, जसपाल सिंह और हेमलता की आवाजें, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

किसी श्रोता ने बड़ी अच्छी सी पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, चलिए पढ़ते हैं। लेखनी जब हाथ में आती, मन की हर धड़कन कह जाती, जो शब्दों में ना ढल पाए, स्याही बनकर कागज पर छा जाए। लेखन केवल अक्षर नहीं, जीवन का मधुर सफर यही। कभी हंसी की मीठी धुन है, कभी आंसू की मौन लगन है। लेखन से विचार संवरते, बिखरे सपने फिर निखरते। सच की लौ जब इसमें जलती, अंधियारी राह भी उजली लगती। कलम की अपनी एक कहानी, बदल दे दुनिया बदले जवानी। शब्द अगर हो प्रेम से भरे, हर दिल में विश्वास उतरे। आओ ऐसा लेखन करें, मानवता का दीपक धरें। हर पंक्ति में हो सत्य का मान, यही लेखनी का सच्चा सम्मान। बड़ी ही खूबसूरत पंक्तियां ये थी। साथ ही एक साथी ने बड़ी मजेदार बात लिखी है। इन्होंने लिखा है, जब मैं कागज कलम लेकर बैठता हूं तो मुझे नींद बहुत जल्दी आ जाती है, पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। अब एक राज की बात अगर बताएं तो पढ़ाई के दिनों में मेरे साथ भी ऐसा होता था, और मुझे लगता है कि एक एक समय होता है जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव जब होता है, हम लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं, तब ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलता है कि किताबें खोलने के बाद, हाथ में पेन लेने के बाद नींद आने लगती है। और तब माँ पिताजी कहते हैं कि अच्छा नींद आती है ना किताबें लेने पे, फिर तब आप हाथ में किताबें उठाएं, जब आपको सोना है रात के समय में, फोन रखिए और किताबें उठाइए ताकि पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाए, है ना। यदि आप में से और भी किसी साथी के साथ ऐसा होता है तो आप लिख सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा करने वाले, अब ये लिखने वाले साथी और मैं ही हैं, या और भी ऐसे साथी हैं जिन्हें किताबें और लेखनी हाथ में लेने पर नींद आती है। चलिए तब तक सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में दोस्ती फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: जी हाँ, इस गीत में जो शब्द था वो था आवाज, और इससे पहले जो गीत आपने सुना उसका शब्द था दिशा। और हाँ बिल्कुल, आप में से कई श्रोताओं ने इसका सही जवाब भी दिया है। एक साथी ने लिखा है, जज की कलम से कोई बरी होता है तो कोई फांसी चढ़ता है, गुरु की कलम से हम साक्षर होते हैं और माता पिता की कलम से ढाढ़स बनता है। तो कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। एक साथी लिखते हैं, कलम रिश्ते को तोड़ देती है और जोड़ भी देती है, कलम से लिखी गई चिट्ठी मन के भाव को बयां करती है, कलम से निकले शब्द ही प्रेम व्यक्त करने का जरिया है। वहीं पे एक साथी लिखते हैं, जो काम धरने प्रदर्शन अनशन और आंदोलन से नहीं होते हैं, वे काम कई बार कलम की ताकत यानी कि लेखन, विचारों और कानून से हो जाते हैं। कलम की इस अद्भुत शक्ति से प्रमुख उदाहरण में वैचारिक क्रांति, कानूनी बदलाव और जनमत निर्माण शामिल है।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और

0: से जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
3: लीजिए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत, मन्नाडे की आवाज गुलशन बावरा का ने इसे लिखा है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना।

जी हाँ, तो ईमानदारी से लिया गया शब्द ईमान इसमें शामिल है। एक साथी लिखते हैं, सच कहें तो सुरीला सफर के इबारत ने कुछ लिखने को प्रतिदिन प्रेरित करती है। लिखने की जुनून को पुनः जागृत करने का विविध भारती का शुक्रिया। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि विविध भारती आपको जागृत करती है और उसके बाद आप लिखते भी हैं। तो आप इसी तरह अपनी टिप्पणियां लिखते रहें, अपने दिल की बात विविध भारती से साझा करते रहें, यानी कि हमसे साझा करते रहें। एक साथी लिखते हैं, लिखने से दिल का आधा बोझ हल्का हो जाता है। जी हाँ, ये सच में बिल्कुल आपने सही लिखा है। अक्सर कई बातें ऐसी हो जाती हैं जो हमारे दिल में होती हैं लेकिन हम बयां नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम अपनी बात को साझा करें किसी से, मगर विश्वास नहीं होता, या तो फिर हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझेगा नहीं। और कभी कभी यह हमारी गलत फहमी भी होती है, हो सकता है सामने वाला हमें समझ भी ले, तो बयां भी कर सकते हैं। और यदि आप बयां नहीं कर पा रहे हैं तो उसे कहीं उतार लें, कहीं लिख लें, मन पर ना उतारें किसी भी किसी की बात जो आपके दिल को ठेस पहुंचाए। तो ऐसी किसी बात को मन पर लिखने से अच्छा है आप एक बार उसे कागज पर लिख दें और उस कागज को मोड़ माड़ कर फेंक दें, ताकि दोबारा उस बात से आपको ठेस न पहुंचे। एक साथी ने लिखा है, मुझे लिखने के पहले बहुत कुछ सोचता है, यानी शायद ये लिखना चाहते हैं कि बहुत कुछ ध्यान में आता है लिखने से पहले, लेकिन जब लिखने बैठता हूँ तब शब्द भूल जाता हूँ, इसलिए मुझे लिखना नहीं जमता। एक छोटा सा सुझाव देना चाहती हूँ, ऐसा मेरे साथ भी होता है और मुझे लगता है हर किसी के साथ होता है। जब भी हम कोई विचार अचानक से हमें सूझता है तो मेरी आदत है कि मैं उसे कहीं लिख लेती हूँ, या तो नोटपैड में, या फिर अक्सर पहले मैं डायरी अपने साथ रखा करती थी कि जब कुछ अच्छा सा दिख जाए, कहीं सड़क पर, कहीं बाहर गए हैं, कोई अच्छी बात पसंद आए किसी की, तो मैं उसे झट से शॉर्ट में लिख लेती थी ताकि बाद में उसे विस्तार से उस पर विचार लिखे जा सके। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, डायरी आपके पास ना हो लेकिन फोन पर नोटपैड तो आपके पास होता ही है, तो उसमें कहीं नोट करके लिख लें ताकि जब आप लिखने बैठें तो उन शब्दों से आपको वो विचार फिर से याद आ जाए और आप उसे अच्छे से लिख सकें। तो अगर ये टिप काम आ जाए तो ट्राई करके देखिएगा। और अब फिलहाल आपको सुनवाते हैं बाबुल फिल्म का गीत, तलत महमूद की आवाज, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद अली का संगीत।

जी हाँ, तो शब्द था मिटाना, कई साथियों ने बिल्कुल सही पहचाना। अरे वाह, ये तो तुकबंदी बन गई। चलिए आगे, एक साथी ने लिखा है, पेंसिल की असंख्य गलतियां माफ है, उसे रबर से मिटाया जा सकता है, परंतु कलम पर बोझ बहुत है क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत हैं, उससे जो लिख दिया गया तो उसे मिटाया नहीं जा सकता, अतः कलम का उपयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। किसी ने लिखा है, कई महान क्रांतियों की शुरुआत भड़काऊ नारों से नहीं बल्कि शक्तिशाली लेखों और किताबों से हुई थी। मजबूत लेख और दस्तावेज सरकारों को नीतियां बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कलम विचारों को दूर दूर तक पहुंचाती है, जिससे लोगों की सोच बदलती है। जी हाँ, सोच को बदलने के लिए कलम बहुत बड़ा काम करती है। तो आइए, इसी के साथ आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम पाकीज़ा, लता मंगेशकर की आवाज, कैफ भोपाली ने इसे लिखा है, गुलाम मोहम्मद का संगीत।

जी हाँ, शब्द था सर, आप लोगों ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है, मैं कक्षा 10वीं में था जब मुझे एक प्रेम पत्र लिखना था। जब मैं कागज कलम उठाई तो दिमाग और दिल इतना धड़क रहा था कि क्या क्या लिखूं, लेकिन एक पीरियड में मैंने अपने दिलों दिमाग की सारी बातें कागज पर उतार दी। मन इतना तरोताजा हो गया कि मुझे कोई टेंशन ही नहीं रही और फिर मैंने उसे भेज दिया। अब ये तो अधूरी कहानी हुई, आगे तो बताइए क्या हुआ, क्योंकि अभी क्या स्थिति है और आगे क्या हुआ ये भी तो आपको बताना चाहिए, वरना हमारे साथी कैसे समझेंगे इस अधूरी लिखी कहानी से। तो इसे पूरा कीजिए और तब तक सुनिए ये अगला गीत, फिल्म का नाम नया दौर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

किसी साथी ने लिखा है, मैडम जी सॉरी टू से, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अब तो पेन कलम का लिखा भी मिटा सकते हैं, वाइटनर है, करेक्शन पेन जो उपलब्ध हैं, तो अभी के लिए वंस अगेन सॉरी। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, करेक्टर जो करेक्शन करने के लिए वाइटनर आता है या फिर जो एडिट किया जा सकता है, उससे आप कहीं कहीं कागज पर या फिर सोशल मीडिया पर लिखा हुआ एडिट या वाइटनर लगाकर उसे मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बात किसी के मन पे लग जाए तब उसे आप कभी नहीं मिटा पाएंगे। तो इसलिए हमेशा अपनी कलम का इस्तेमाल बहुत ध्यान से सोच समझ कर करिए। इसी के साथ आज की इस सुरीला सफर कार्यक्रम से इजाजत दीजिए नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

0: Good afternoon. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continue to wreak havoc in Kerala. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally, including 13 gold. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
1: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए हैं, परिवार के लिए हैं, समाज के लिए भी हैं और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए हैं। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
0: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100

0: मजबूत कदम हो गए, 100 मजबूत स्टेप.
1: Mr. Modi said a drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of a nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals.
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है. और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है. और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है.
1: The Prime Minister urged the families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help, communicate openly, consult

0: runners up in their respective men's weight classes. India's judokas also scripted history, winning 4 medals in the country's best ever Commonwealth Games performance in the sport. Harsh Singh and Asmita Day became India's first judo gold medalist at the Games, while Yamini Maurya won silver and Unnati Sharma claimed bronze. Para athletes added another landmark chapter, securing 7 medals, 3 gold, 2 silver, and 2 bronze, their best ever Commonwealth Games haul. Soman Rana won the men's 5F7 para shot put gold with a season best throw of 13.40 meters, while Shubham Joyal took silver. On the track, Gulveer Singh became the first Indian to win a Commonwealth Games 5,000 meter medal by claiming bronze, supplementing his earlier silver in the 10,000 meters. Komudi Parikh for Akashvani News.
1: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges youth of the country to be physically fit and mentally strong in the run-up to the goal of Viksit Bharat. Launching Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan, Mr. Modi said young people should stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. Heavy rains continued to wreak havoc in Keralam. 8 people reported killed, thousands shifted to relief camps. US President Donald Trump puts on hold planned military attack on Iran, claiming framework of a potential agreement had been reached. In badminton, Tanvi Sharma claims her maiden BWF World Tour title at Taipei Open. And in Commonwealth Games, India enters the final day with 4th place in medal tally. And with that, we end the midday news.
2: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जानमाल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमला स्थगित किया, कहा संभावित समझौते का ढांचा तैयार। बैडमिंटन में भारत की तन्वी शर्मा ने ताइवे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
3: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
2: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
3: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक मां की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की

0: शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाए नहीं।
0: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप द्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
3: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के

0: तेज कर दिए गए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरल, माही, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में तीन भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत 7 स्वर्ण और 3 रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
2: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बूरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंगास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
1: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी

0: जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए आगाज करते हैं श्री 420 इस फिल्म के गीत के साथ, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। शैलेंद्र की शब्द रचना है और शंकर जयकिशन की धुन।

खटोला इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। आवाज थी मोहम्मद रफी की, शकील बदायूनी की रचना, नौशाद का संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं वचन फिल्म का गीत, आवाज आशा भोसले की और गीत संगीत रवि का।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

नया दौर फिल्म से गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी ने सिलखा था ओपी नैयर का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जश्न फिल्म का ये गीत, स्वर आशा भोसले का। आर कृष्ण ने इसे लिखा है और रोशन का संगीत।

0: पेइंग गेस्ट। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर, सॉरी क्षमा कीजिए, आशा भोसले की आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और सचिन देव बर्मन का संगीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं परिवार फिल्म का गीत, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की, शैलेंद्र की रचना, सलील चौधरी का संगीत।
1: तत् आ थे थे तत् मुरली की धुन सुन आई राधे जमुना के तट पर, जमुना के तट पर निरत करत उठ हिरत फिरत उठ हिरत फिरत ऐसे चंद्र तपन दिग्दिग्नाथ राम तत थे राम तत थे राम तत थे राम तत थे।

Da-da-ya-da-ya-da. Da-da-ya-da-ya-da. Da-da-ya-da-ya-da.

0: मुझे किसी का कहा, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा, तो तुम सा नहीं देखा।
1: इस गीत के साथ ही अब सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत,
0: मन चाहे गीत,
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत इस कार्यक्रम को लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, इस कार्यक्रम में आज मैं पहली बार खतों को लेकर बैठी हूं यहां पर आप लोगों से जुड़ने के लिए, आपके नामों के द्वारा, आपके खतों के द्वारा। तो कार्यक्रम का आगाज करेंगे, पहले सुनिए ये छोटा सा संदेश।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
2: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
2: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
3: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

फिर नियम और शर्तें तो आपने सुन ही ली, तो आगाज करते हैं आज के इस कार्यक्रम का। आज आपको मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए पहले देखते हैं किसका खत शामिल किया जा रहा है। ये जो लिखा है खत हमें, ये लिखा है जालंधर पंजाब से रमाकांत शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, रवि शर्मा और अक्षय शर्मा ने। तो आपको सुनवा रहे हैं इनकी पसंद पर डोली फिल्म का गीत, आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। और इसी गीत को ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सुनना चाहा है सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया ने। तो आइए इन सभी की पसंद पर सुनते हैं रजिंदर कृष्ण का लिखा ये गीत।

मन चाहे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की। नक्श लायल पुरी ने इसे लिखा है, खयाम का संगीत। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है गुजरात जूनागढ़ से कीर्ति सोलंकी और मिसेस कीर्ति सोलंकी ने। इस गीत को सुनना पसंद किया है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

और लीजिए, अब आपको सुनवा देते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आवारा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने और शंकर जयकिशन का संगीत है। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है अब्दुल फादर खत्री, शिरीन बानो खत्री, अब्दुल अजीज खत्री और अफीयत खत्री ने। इसी के साथ इस गीत को सुनना पसंद किया है कोटवा नारायणपुर से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। तो चलिए, इन सभी की फरमाइश पर सुना जाए ये गीत।

अपना देश इस फिल्म से गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल थे राहुल देव बर्मन का संगीत। और इस गाने की फरमाइश हमें तेलंगाना से भेजी मोहम्मद बुरहानुद्दीन फज

0: फरहान लल्ला, फरहान लल्ला, समायरा अजमीन गुड़िया ने, और इस गीत को सुनना पसंद किया जोधपुर से जबर सिंह फूल वाले, रुद्राक्ष मानू, दिनेश सोढ़ा, देवेंद्र सिंह फूल वाले ने। और आज का ये जो हमारा सफर था मनचाहे गीत का, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। आपके खतों का इंतजार हमें जरूर रहेगा, तो अपने खत भेजते रहिए और हमसे जुड़े रहिए इन खतों के जरिए। और आज ये कार्यक्रम मैंने पहली बार पेश किया है, तो यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। दिल में कोई बात ना रखें, अपनों से हमेशा अपने दिल की बातें साझा करते रहें तो दिल हल्का रहेगा। इसी के साथ अब इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम से, नेहा अगरकर देसाई को नमस्कार।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने नाटक तोहफा। दिल्ली के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर ने अपने आखिरी दिन अंग्रेजी हुकूमत के कैदखाने में बिताए थे। मुगलिया सल्तनत के इस आखिरी चराग को उसके अपने घर की हवाओं ने गुल किया, लेकिन अंग्रेजी कमांडर ने जो तोहफा दिया वो बादशाह तो क्या, पत्थर का कलेजा हिलाने के भी काबिल था। आइए इसी वाकये पर आधारित ये ड्रामा सुनिए, तोहफा। मूल कहानी मधुकर गंगाधर, रूपांतर जोहरा मिर्जा और निर्देशक हैं लोकेंद्र शर्मा। तो लीजिए सुनिए नाटक तोहफा।

0: दिलेराना हिम्मत और नए ताजा जोश व खरोश के साथ मुकाबला करने का है।
1: आंसू बहाए नहीं जाते बख्त खां, ये तो खुद बखुद बहने लगते हैं। खैर छोड़ें इस तज़किरे को, ये बताएं क्या खबर लेके आए हैं।
0: ये गुलाम आका की खैर आफियत के लिए हाजिर हुआ है, क्योंकि ऐसे खतरनाक हालात में पहरेदारों पर भी यकीन करने के लिए अक्ल इजाजत नहीं दे रही है।
1: तो फिर इंतजार किसका है? जितना जल्द हो सके इस जगह को खैराबाद करें। पता नहीं क्यों कुछ अजीब सी घुटन महसूस कर रहे हैं हम।
0: हमने चंद लम्हों के लिए यहां कयाम किया है अलीजा।
1: क्या कह रहे हैं बख्त खां?
0: ये नक्शा अपने साथ लेकर आया हूं, मुलाहिजा फरमाएं और हुक्म करें। हम अब अलीगढ़ के रास्ते की तरफ नहीं जा सकते। फिरंगियों ने वो रास्ता बंद कर रखा है।
1: ठीक है, हमारे सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं, आगरे से पूरब होकर चंबल के भीड़ों में जाएं, या भरतपुर के रास्ते मेवाड़ की तरफ।
0: मेरे ख्याल में मेवाड़ की तरफ जाना हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा।
1: आपको यकीन है भरतपुर हमारी मदद करेगा?
0: एलची रवाना कर दिया है अलीजा, भरतपुर से अनकरीब यहां पहुंचने ही वाला होगा।
1: मां बदौलत को अपने सिपह सालार पे यकीन कामिल है। आप जो भी चाहें करें, लेकिन जल्द से जल्द करें।
0: बस मेरे शाह, मैं आनन फानन गया और सारा बंदोबस्त करके आनन फानन हाजिर होता हूं।

0: दादा जान।
1: दादा जान की जान, आओ आओ, बोलो बेटे रुखसाना।
0: अब आप ही फैसला फरमाएं।
1: किस बात का फैसला बेटे?
0: हम दादी जान से बार बार कहते हैं
1: क्या
0: कि हमें चांदनी चौक हवाखोरी के लिए भेजिए, मगर वो सुनती ही नहीं है।
1: अभी तो शब है बेटे, और रात के वक्त सैर को नहीं जाया करते।
0: लीजिए, दादी जान भी आ गई।
2: मेरे सरताज, इसे किसी तरह से समझाइए।
1: कह तो रहा हूँ मेरे बेटे, हम सुबह सैर करने चलेंगे और फिर
0: आगे फरमाइए ना, खामोश क्यों हो गए आप?
1: हम क्या कह रहे थे?
0: हम जानते थे यही होगा, आप बहुत सी बातें भूल जाते हैं। दादा जान, क्या रात भर हम यही रहेंगे?
1: हाँ बेटे, हम यही रहेंगे।
0: हमारी सारी कनीजें कहाँ गईं?
1: अपने अपने घर।
0: मगर क्यों?
1: अल्लाह का ऐसा ही हुक्म है बेटे।
0: अल्लाह ऐसा हुक्म क्यों देते हैं? हमें यहाँ गर्मी लगती है, कोई हमें पंखा झलने वाला भी नहीं है।
1: कोई बात नहीं, आपकी दादी जान आपको पंखा झल देंगी।
0: हमें कपड़े कौन पहनाएगा?
1: दादी जान।
0: खाना कौन खिलाएगा?
1: दादी जान।
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: दादी जान क्या कोई फरिश्ता है जो सारे के सारे काम अंजाम फरमाएंगी?
1: चलो थोड़े बहुत आपके काम हम भी कर देंगे बेटे।
0: आप? दादा जान।
1: हाँ।
0: आप?
1: क्यों, हम नहीं कर सकते क्या?
0: दादा जान।
1: हाँ।
0: आपको तो हुक्के के लिए, खासदान के लिए, उगालदान के लिए, पापोश पिन्हाने के लिए अलग अलग खादिम चाहिए, और आप?
1: बेटे रुखसाना, ये वक्त बड़ी जालिम शय होता है, ये किसी से कुछ भी करवा लेता है बेटा।
0: खैर दादा जान, इस सिलसिले को यही खत्म करें।
1: हाँ।
0: और फिलहाल हमें कोई किस्सा सुनाएं।
1: बहुत खूब बहुत खूब, हम आपको किस्सा सुनाते हैं। एक था बादशाह, घोड़े पे सवार, हाथ में चमकती हुई तलवार। वो
0: जिधर से गुजरता था जलजला सा आ जाता था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया

0: दादाजान, ये किस्सा इतनी बार आपने सुनाया है कि बिल्कुल हिफ्ज हो गया है। दादाजान, ये घिसे पिटे किस्से आप अपने पास ही रहने दें, मैं अम्मी जान के पास जा रही हूँ।
1: लेकिन लेकिन एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जलजला तो रुक गया, लेकिन एक खौफनाक तूफान बपा हुआ, खतरनाक खूंखार तूफान। सियाह आंधियों के थपेड़ों ने सब कुछ तितर बितर कर दिया।
2: मेरे सरताज, किस्सा आप किसे सुना रहे हैं? रुखसाना तो कब की यहां से जा चुकी है।
1: रुखसाना चली गई। मलिका, आपकी आवाज इस कदर गमजदा क्यों हो रही है?
2: यूं महसूस होने लगा है जैसे कुदरत की सारी नियामतें वीरान हुई जा रही हों। चमना का पानी बदरंग और सियाह लगने लगा है।
1: मलिका आलिया, कभी जमुना के बारे में ऐसे अल्फाज भूल से भी अपने लब पे न लाएं। पानी तो दुनिया के हर दरिया में बहता है, लेकिन दरियाए गंगा और जमुना में आबे हयात बहता है। जमुना कभी भी बदरंग और बदमजा नहीं हो सकती।
2: संग तराशों के फन को शाही रुतबे ताज खिलत से नवाजने वाले सल्तनत मुगलिया के चश्म चराग शहंशाह शाहजहां ने इसी जमुना के रास्ते लाल किले में अपने कदम रंजा फरमाए थे।
1: हाँ मलिका आलिया, हम उन्हें शहंशाह शाहजहां के वारिस हैं जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े आलिमों और हुनरमंदों को एक झां कर लाल किला तामीर करवाया और जमुना के रास्ते किले में तशरीफ लाए। और एक ये बदनसीब जफर रात के अंधेरे में उसी लाल किले को दुश्मनों के नरगे में उनके रहमो करम पे छोड़ के पीछे के दरवाजे से उसी जमुना के रास्ते से भागकर इस वीरान अंधेरे मकबरे में पनाह ले रहा है।
2: मेरे सरताज, ये मकबरा उन्हीं खुशबख्त शहंशाह हुमायूं का है जो अपने दुश्मनों से शिकस्त खाने के बाद दोबारा सल्तनत हासिल करके तख्त नशीन हुए थे।
1: हाँ मलिका आलिया, पत्थर की इन दीवारों से जब कभी हाथ मस हो जाता है तो सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यूं महसूस होता है जैसे कोई बुजुर्ग पृष्ठ थपथपा के कह रहा हो, हमने हिंदुस्तान में रहकर ऐसी ऐसी नायाब चीजें हासिल की जो शायद फरिश्तों को भी नहीं मयसर। उन्हीं में से बेश कीमत चीज है जज्बे हुब्बुल वतनी। मुल्क पर कुर्बान हो जाने का जुनून ही तो है कि आज भी हमारी झुकी कमर में फौलाद सी सख्ती और खुलती बंद होती आंखों में आफताब के शोले दहकते रहते हैं।
2: मेरे सरताज, ऐसा लग रहा है जैसी अनजानी ताकत ने हमें अपने हाथों का खिलौना समझ लिया हो।
1: उम्र का लंबा हिस्सा हमने गुलाबों और इत्र अंबर की महक में डूबे भावों में गुजार दिया। ये तो पाक परवरदिगार का मौजिजा है कि इस ढलती उम्र में सल्तनत मुगलिया की शान और शौकत बरकरार रखते हुए अपनी मादरे वतन पर कुर्बान होने का मौका अता फरमा रहा है।
2: कोई आ रहा है।
1: आप पर्दे में हो जाएं।
3: आलीजा,
1: क्या खबर लाए बख्त खान?
3: आलीजा, सारी दिल्ली पर फिरंगियों ने कब्जा कर लिया है। लाल किला अंग्रेजी फौज की गिरफ्त में पहुंच चुका है। आलीजा,
1: हमारी गलत आदतों का अंजाम यही होना था बख्त खान। अफसोस, हमारी आंखें कैसा मंजर देख रही हैं। हम शिकस्त खुर्दा लाचार फिरंगी के पास फतेह के अंबार।
3: आलीजा, हमारी ये भी बदनसीबी है कि ऐसे नाजुक वक्त पर भी हम मुगल, पठान, मराठा और राजपूतों में बट के रह गए।
1: हमने सुना था वक्त खान, बुरा वक्त और मुश्किलें इंसान को एक कर देती हैं, लेकिन नहीं, तकदीर में फिरंगियों के हाथों हमें तबाह ताराज होना ही लिखा है। हमें शिकस्त का ही मुंह देखना होगा शायद।
3: हरगिज नहीं आलीजा, हरगिज नहीं। इस सरजमीन को हमारे

0: आबाओ अजदाद ने अपने खून से सींचा है, हम अपनी मादरे वतन को फिरंगियों की चारागाह बनने नहीं देंगे। जंगल बियाबानों पहाड़ों की गुफाओं में पनाह लेंगे और इन नाहंजारों के साथ जंग जारी रखेंगे।
1: मफ्त खान, इस शाह की उम्र 80 बरस की हो।

कर्णम लक्या कस्पनी घटी महाभव बीरटार जिग था बीरटार पढ़िए बांगनी लिमदम सिंगरंगर लांग के टिफेन की सुन के फो शिवसागर सरायदेव जोरहाट लपेन्दे गोलाघाट दृष्टिगारा फान पेना पेन पाई पाई निफाई फो आर्नियांग बोंग बैंक अकाउंट्स पेन टंका सूरी क्रेपो पीपन पो शिवसागर डिस्ट्रिक्ट सूरी फो कैबरा फो सरायदेव डिस्ट्रिक्ट सूरी इंकय जोरहाट डिस्ट्रिक्ट सूरी चौकसी लपेन गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट सूरी के थमा हेमसर बांसो अटंका लोंगपो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा पटमी सोशल मीडिया पेंसी बांसो लाम थान पाची निपनलो अलांग लिकनिंगजी के डिस्ट्रिक्ट फ्ली उरुनोदय बेनिफिशरी अटुम टंका सूरी हिनीरा फारुफो पो लोंगपो आखिहाय चीफ मिनिस्टर किनिंगजी के लहाय डिस्ट्रिक्ट अलोंग लांग सान बमलो बंदा नो नमात हेम के चिदाम जी के किसिकसाक दोलांग बांसोलाम माथासी स्टेट गवर्नमेंट शिवसागर लपेन सरायदेव डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक गृहिंगामी केपारी डेंगाटुम फान फारुक एथम यूनिट इलेक्ट्रिसिटी केमापची अफान काम परिडेंगलो पु आगाय चीफ मिनिस्टर थान पाचिनीलो अलांगली किनिंगजे के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फान पेंसी बांसो टंका पीपो प्रीपेड केपारी डेंगाटुम फान फारुक एथम यूनिट रिलुट क्लेम पीपो पुटा अलांगली निंजेलो रिहिंगमे अदाम पेनाप पेन अपार्टा जेक था रिहिंगमे अदाम केमाप पेन अपार्टा शिवसागर लपेन्टे सरायदेव डिस्ट्रिक्ट आराटाटुम पेनिंग लोंगले खजना ता पीना निलो लांकेथे पेन कहेनो आंगनवाड़ी सेंटर अफान टंकाल लाखिनी रासुनी फोके पीपो पु अके हाई चीफ मिनिस्टर निंजेलो आलांग लिखिनिंगजे के स्कूल रिपेयरिंग फान पाई पाई नि फाई फो लपेन थ्रक अर्नी थंका लाख हिनी हिनी लपेन ते नाम घर रिपेयरिंग फान पाई पाई नि फाई कैप अर्नी थंका लाख सिरा सुरी फो कैप पीपन पो लांगेते हा वार लोंग पाई पाई नि फाई कैप अर्नी पेन स्कूल कांगपु पंजिया फान बर इपो पु आगे हाय चीफ मिनिस्टर निंजेलो चीफ मिनिस्टर पटुमी इंसुरेंस कंपनी अटुम पेन माइ पादोसी इंसुरेंस क्लेम जयके पेन केपा सेटेल फान कंपनी अटुम इनुनुत नोडल ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट केपा पिया फान थान पाचिनी पनलो सेंट्रल गवर्नमेंट असम पेन पेन लांकेथे के फो स्टेट अफान टंका क्रूर सुरी हिनीरा फारुई सिरा क्रिथ्रक सिरा लाख थ्रक नेर केबरा फो अटंका रिलीज लो बांसो टेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट आहिन पेन एडवांस किस्ती सुरीनी राइन कोर थ्रक लपेन कोर थ्रक सी अनिंग कान अफरमान असम अफान टंका क्रूर सुरी के थमरा फारु थ्रक दे एक था क्रूर फारु के थमरा थ्रक सी कैबरा सिर कैबरा लाख थों कैबरा फो लपेन थे अरुणाचल प्रदेश अफान क्रूर फिली कैबरा फ्ली रा लाख फो कैबरा फो अटंका रिलीज लो

0: রেডিও কার্যরা দাতম লাপনাপর ফুলমতি বাগলারি কিলন বড় লুনবারিম আর্জলং একটাংল লাপুয়ানসি বড় লুনবারিম কিরতকে পার্জুয়া জামিয়াকে কাংটন একল লাকে আকাশবাণী দীপু।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
2: देश के युवाओं ने ठाना है भारत को आयुष्मान बनाना है। आज ही पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाकर उन्हें दे नए साल का उपहार। 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिला 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार का अधिकार। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।

वर्षा के मी चु एंदुनिक था लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग आसन आसन का पचे थांग वर्षाई दो लबांग सुंग बंग माई मीटिंग पांगरी पांग दोन महांग के थे किथी के जांग के जोर के नाम कुलारा की मिकांगपू हेम की मिकांगपू चुजुन चमांकान रोंग केयर आरोंग अजे बिहू क्रिसमस निंकान की मिया हिरजुमी लपेन अनपार्टा कप्रेक आसन आसन आलाम पचे थांग जी लिपुते लद्दाख आकाशवाणी दिफुअलंग नंग हुमरी इक्तमी मोबाइल पे जोंसी चिंकी इक जी पुलोते मोबाइल नंबर के 9476880085 लापेन 9101008242 हेनलो

रेडियो कार्जू रहा तुम लापोना पोना ले तुम चिमित में पेन ट्रांसमिशन लॉन्ग पेन जाय में कर्जू लॉन्ग बम लाके आकाशवाणी दिपू पेन जाय में के रोट का पचे थांग पोन बम एफ एम बैन लॉन्ग पेन फारू इसी रा तो बर्सर के मेगा हर्ट्स रेस एप्स लपेन के न्यूज ऑन एयर एप्स लॉन्ग पेन अदुन थ्वार लिख से नांग हिंदी लामर जन का लिया लुन अजय मेक लबंग सॉन्ग डेंग लॉन्ग पेन के चेंग सिलुन अर्जुक से नांग अलास के पेड़ पु बांसु अलबामा लॉन्ग पेन द लोकल ट्रेन बैन तुम गिलुन आओगे तुम कभी पु बंसोलो तंगते अर्जुन सिन्हा लबंग सोलो।

0: ಕೆಚೆಂಗ್ಸಿ ಬಂಗೆ ಇಸಿ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಯಕೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಡಾಮ್ಸಿ ಚೆಪಾಕ್ಲಾಂಗ್ಸಿ ಅಜ್ಜಾತ್ ಪುಸಿತಾ ಹ್ಯಾ ಅನಿ ಸಿಬೇದ ಮೆದೇರಗಿ ಸೊನ್ನಯ ಕೈಡಿಂಗ್ ಪಿ ಅಫಾನ್ ಚೆಪಾಕ್ಲಾಂಗ್ ನಿಂಗ್ ಪಕಿ ಸೊನ್ನಯ ಸಿತಾ ಹೈತಿ ಕೆಚೆಂಗ್ಸಿ ಬಂಗೆ ಡಾಮ್ ವೆಕ್ ನಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಚೆಪಾಕ್ಲಾಂಗ್ ವೆಕ್ ನಂಗ್ಲಾಂಗ್ ಹಲಾಸು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬಂಗ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಸಿ ನಂಗ್ ಪುಡುಂಜಿ ಮಾಪು ಚೆನ್ನ ವೆಕ್ ನೈ
1: ತಟೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೆನಾಂಗ್ ಆನ ತುಮ್ಕೆ ಅಮೆಕ್ ಕಚೆರು ಮತ್ತೆ ಅಮೆಕ್ ಸುಪ್ರದು ಅಮೆಕ್ ಎರ್ ಹಾಂಗಸೋನ್ ಮನೆ ಅಮೆಕ್ ಇಹಿಲು ಬರಸೋನ್ ಎಲ್ಲಪೆನ್ ಕೆ ಮುಪನ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಲ ಅಮೆಕ್ ಅತಿ ಬೇರೆ ಜಾಂಗ್ ಅಮೆಕ್ ಹಿತ ಜಾಂಗ್ ಉಟಿತಿ ಅದತ್ ಮದು ತಂತೆ ಹಲಹಾಯ್ ಪೆನ್ ಕೆ ಲಾ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಪೆನ್ ಕೆ ಚರಾಪ್ ದು ಮಾ
0: ಲಪುಸೋನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಕೆ ಚರಾಪ್ ಕೆ ಅವೆ ಹೆ ತೆ ಬೋನ್ ಸಿತಾ ಹಲಹಾಯ ಕಿ ಸೋಪೆನ್ ಅಜಾಕ್ ಅದುಬೈ ಕ ಚಿಚೋರ್
1: ಕಲಾ
0: ಅದಾ ಅಜಾಕ್ ಅದುಬೈ ಬಂಗ್ ಕೆ ಲಸೋನ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಕೆ ದೋ ಅದವೈ ಬಂಗ್ ಅರ್ಜಿ ಕಿ ಡಿಂಗ್ ಜೊಂಗ್ ಸಿ ಚೆಚೋರ್ ಲು ಪೊಲೋತೆ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಪು ಲಸೋನ್ ತಾ ಇಸಿ ಆ ಟರ್ಮ್ ದೋ ಹೆ ಲಾ ಬಂಗೆ ಲಹಾಯ್ ಅದವೈ ಕಿ ಚೆಚೋರ್ ಕಿ ಚೊಕ್ ಚಿಯ ಜೊಯ್ ನಿಲು ಆ ಪೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿಚೋರ್ ನೈ ನಿಪ್ಲಿಯಾ ಫಾರ್ಮಾನ್ ಹಾ ನಿಕೆಪ್ ನಿಕೆಪ್ ಆ ಫಾರ್ಮಾನ್ ಆ ಚಿಕ್ಲು ಆ ಚಿಕ್ಲು ಆ ಫಾರ್ಮಾನ್ ಆ ನಿಂಕಾನ್ ಚಿಚೋರ್ ದೇ ಅದ ತುಮ್ ಹೆದಿ ಹಲಾ ಸೊನ್ನ ತುಮ್ ಆ ಕೆನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಯ್ಡ್ ಕಿ ದೋ ಅದವೈ ಲೆ ಚಿಚೋರ್ ಲು ಪೊಲೋತೆ ಲತಾ ಇಸಿ ಗ್ಲುಕೋಮಾ ಅಂಥೆ ಕ್ಲಾಂಗ್ ದಥೆ
1: ग्लोकोमा आर्नी लपेन के ग्लोकोमा आकिसु आरुई लबांगसो पुथाक अपोर का दुरे पोसी ए नांगलिहिन पेन जसमेट पेट पेन पिनी लबांगसो कचिंग वाई लबांगसो कचि थाना लाम जिरा हुत एलाम जिर बांग चिरा हुत ए ग्लोकोमा पुथाक ला पांचो सेरार फान के पचनी लपेन जोय के पेन के थान थेक जी लपेन का लांग तुम अनिंग गचि बियर जे फान नांगलिहिन पेन एथेथि निवेत सिस्टम ए क्रि पलाम थानिक थ
0: ग्लुकोमा पुदेत कालिलो है अस अजात असोन पुसितामे इमेक पेन कचिराप लो कासोन आनलो ইমে কাচি রো পনয় ইমে কিছু পনয় ইমে কা হোম কিছু পনয় কাচি চার চে পনয় আজাত আসন পুষে তামে লাহাই রং ইমে কা হোম কিছু তাহ কাচি চার চে তাহ ইমে খ্রি কিবু ইমে এরহাং ইমে কা টেবের দক তাহ পো আজাত কিছু পুষে তামে কেচেং সি বাংকে হসপিটাল লং পালি নাং পো আমে কা ডক্টর কে ইলি তুম রং রূপ আজু কে আবি কে আবি আবি মাসে আবি মানে আফাই কমলাং কাশি তেবন সীতা হালা ডাক ডক্টর লং চেপাকলাং দাম পেন কেচেং সিয়া ট্রিটমেন্ট আলাং লিটুম পেন এন পেন আলাং লিটুম বাং আকু পুথত পিন খাত পুমাতে নাং লিটুম নিলিটুম ডাকি উন এলো পট নাং লিটুম আকে হেলো হায়ার সেন্টার লাগেলে রং পেন ডাক দিফুয়ান পুষিতামে হা ডাকলে নাং লিটুম দাম ময় নাং লিটুম চেপাকলাং দাম ময় পোলাসন কাপিন খাত দুটা থেক হে হাল হাই কাপিন খাত বাং আর ডি পিরা ওয়াং ফিট নাং জি পুজাত লহে মানে লা রেডিও কার্যুয়ারা তো ফান কাচু নিংরি পু বাংকে আথে আনুর পেন আনুর বাং মাথা পো লাদাক তা দোয়াই চিচর টাং বোমকে মি পুবো নিথম বাক চেডেন সিনা ইরুই বাক চেডেন সিনা লালে মি মি তিমু দামাং পুহেদি হালা সুকা মাথা আফাই দুপি লাসি নিলি বাংকে কাচু নিংরি পু বাংকে ইমে কা বাংকে ইলি তুম লা আন পাংখ্রি বি নাংনি লাসি আজাত পেন নয় হে মো পেন নিলি পু সন আফং পং এসো আমেক এসো আমেকাং পং এসো আমি কাতে বের কে দো কাছে চার চে আজাদ পেন পুসে তামে কে চেং সি কে কাতে বক হেত আ হসপিটাল লং চে পাক লাং দাম পেন হাল ডাক পেন বাং আলাং লিটুম নাং কি পিন খাত আসন হাল আলাং লিটুম তা পিনাং আন গে লাং থেক মাতি পিন খাত প অ লা ডাকে নি লিটুম উন প লা আন চে চর থা বা লা আন আ কে নে আসি চে লাং থা আকো থান থুলি প নি লিটুম কি উন এ প নাং লিটুম দি ফুয়ান চে পন নই বা কে হেলো নানে নিগে হাঙা ডিম চেপন থুই টুম পোলোতে চেপন ওই পোলোতে হালা কাপিন খাটা টেং পেন আর ডি পি পেন হেদি কেচে পাকলাং দাফ্রাং জি আফানসি নীলি বাংকে লা রেডিও কার্যু আর আফান নীলি মানে চুনিং রিজি
1: আদু সি আলাম জি আফ্রাং এসব ঠিহে কালাম না জুলাং লাবংসু আকিসু মতে গ্লুকোমা ডেট দিল লাই এম এক আন আকিসু এলি তুম তে বকেত পপল তুম কারবি আংলং আরং বং বাংকে লাদাক ইন্ডি ফোরং সুপেল ডাক্তার মেডিকেল কলেজ সদল তাংতে বাং কাপড়ে কাপড়ে কাদি মসনক থাক লাদাক ডি ফোরং সুপেলং তা এ মেক কিসো আপু থাক কাচির লাং জিয়া ফান এ কি মিশন অফ আর সাই চকলিম লুপু এ নালি থেকলক নমা
0: আহকালাম থানাং কপ লাদাক বাংকে মেডিকেল কলেজ আলং বাংকে আ কলেজ তা মিরাক লাং আপট নি পিনে লাদাক বাংকে চক লিম যেটো একদম চক লিম আং টন পেন নিলিটো কম্প্রেহেনসিভ আই এক্সামিনেশন পুদো লাস্ট কম্প্রেহেনসিভ আই এক্সামিনেশন বাংকে আং টন পেন মানে আমেক সিকে লাং পো মানে লাদাখ ইলিটোম আমেক আ পার্টস দো কর্নিয়া পুদো কনজাং

0: यो पेन इंगलों आ रे चुतु की दुना सौ अथे के में फीजु कर ले ले कतांग ना लापन के चुमले नंग कतांग ना उफ
1: पीसिया दा प्राण पसी मुत्तुर मा तिपो
0: माय को तो वे पेन आन के चुम हो ले निंगे क्रू लाप से ले पसी मुतुरते ते को पिसी के दो यो थेक पो महो
1: पसी मुत्तुर लो ते आना मिथा मांग जी मानते
0: ए वांग वे के नेता चीनी लो लहलो नाफंता साइचुति की नहीं पुनांग की पुलो के लोग चार्ली दुनता पांचेंग दुन होय हेमा साइले नंके क्लेम लांग मा हा नंग पाई थी लॉट पेन नेके नंग पा नंग के लाना नंग चिपा दुक आंसी एकाई के दाम पुजू
1: मा जोगा पाया पुता आसमार फांग के चपा दुख हुरलो नंग तुम देत का लीलो को नंग ता
0: चिपा दुक नंग पो के चीनी लो दिको सोंदक थाक्सी आओ सो मारा तुम थोत्ता चिपा दुक नंग पो नौ नंग के हेमेन ए रीत एन ए लोले के चाली दुनता काली लापू के कोपुलो मती को
1: बा को लो चार्ली ओ लोते ने पीलो मा को के क्लेम पोगे
0: हाला बांग बांग सोन के क्लेम हुर सोन के
1: बैंक पे निके प्रेक जाम निके पिनपु निमेन के पिनपु के अंते
0: नांग पो के जोगलू ओंगा पोसी नांग फी नांग फुआ तुमता बोकोला पो बुने की इर लोग लू नॉन पुता लासी ने मेन बोकोला पो पु चेथांग रोंग लू बोंता नांग फांसी बोकोला पो पु नांग इर नहीं है पोलो को
1: कोपिला ने का बकोला नंग थान था ने फान
0: बोकोला का लीते कुपिया लांग माती को नांग फान के बांग ही चो नॉन बोलोते चोदेत पु लोले चारी दुनते ओइत पुई है
1: सोयता वरेत मा को कुमारा ही सीने के चोलो मा
0: हाला नांग लोंग के बांग वेरा तुम है को
1: पीलों ते निजर पो तुम की क्लेम
0: हाला तुम को पीसी के क्लेम मा लाके नांग से चीनी लो हाला तुम पीसी के क्लेम मा लाके नांग ता क्लेम दुन बॉम लोग है लाके नांग पोपो को लाता चीनी मा दिको
1: को पीलो मा को नंग फाना के तांग के ला
0: नांग तांग ते बोंता नांग तांग लो ने तार बु हम हम पेन के लोंग तांग का आन पेन सी नांग नांग रेंग दुन चोट के पीनी पेन के नांग ता कप्रेक चुतु नॉन ते नांग
1: नंग चोदन देखो पिलाला
0: चोदुन रुई आतारले आदर कावे पेन सिकांग को वेट अन हेलो कुरी सी बागले गेलोंग लांग मा
1: आई सर बुरा नंग ता कुरी इसिया फांसी सिकाइन कोई पुलो ओह बोको लालंदे बोकोला सार पु
0: कुरी सी ले सिकांग को नॉन सिकांग को ले कुरी सी नॉन सांग लिनी के लोंग ले मती को लाहन लो ने नांग पोसार बुरा तार बुचोत के नांग फानांग पांग रेंग इउन एलो को आको कालीते ने नांग पिनु वान थुलोक पो साइगति किया राबा रियान के दोजी
1: थेरा रे अंता पिसो के एना लामिंग जेला
0: अंते नांगले निमुन पिवान से राग नन
1: वान पु बुता बैंग नांग दुन देदेत के
0: नांग के क्लेम के दाम नौ नाक्रों हाको पेन प्रेक जामा पोसी ला मुन हाई के क्रोय तांग देता के क्रोय क्रे देत लु सीता सिमसात नांग वो वेलांग मा तिपो नांग नांग निंग चेलार ले ती के मुन हाई के तुम हम वांग वे पुसी की पुमा तिपो
1: निंग के केरला एलो ने का माथा लो के मेन नाय के चोक नाय ने साया लोंग जोंग सी माने नंग खाम खे दुन ब्लोते ने पाविर देजी मा जोगा फानन तान ओंग ते नंग फानतालु कलि ते कामिर फानतालु
0: लाके नांगेला पुसी पुजी पु ने चीनी मति को लाहेन लो निया बांग नांग पिनु वान रोंग पुपुलु गे
1: अकोला सो अलाम लिलु
0: आय को इतुमला मचिंग की चिंगबार बेचिंग दोन दे ले लो के तो नेता पिसो एन एलो नांग ता पिसो एन नांग एलो हेमे पु तोत क्राई लो ना हो
1: दजाइन को आले अवे वे लाम लो लाई के ने तमे के जांग जी हेमरलो कोमाने यंग से ने फानांग रिप लते हेदी ने बांग अवे पुले थांदु नंदे ओ बोंता वुड के जॉक दुना जत दुन रिदे
0: बाय को नांग पोपो को लाके अनिकान वांग ता बहुत जोग दून पिसी बहुत जोग दून दे देत पो
1: दुना जत दुन रि मोके लाम हिनो दाग लीजी
0: ने दुंजी दून पेन बहुत पी दुंजी आई बहुत ता पी दून लोंगले पिसु ता एन लोंगले निनिंग ता सिक्सैक ओंगला हो इस आ जानन ला तारबू से राग राग पो आन चुतुन सी बहुत जोग दुन पो हा बा हजार ले कि दुन हुर के मजा हु सिकांग कोई ले लोंग कुरी सी ले लोंग पालोंग आन पालोंग ना हो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया, कहा नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। एसबीआई रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार, केरल में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।

0: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
1: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
1: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री

0: मंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
2: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
1: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
3: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है।

0: इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
1: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो अरीना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi river recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
3: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा इस

0: 1,000 fans will bring 11 days of athletic competition to a finale. The event, which is primarily a celebration of athlete performances, also acts as a thank you to the numerous volunteers and presents the host for the last time with performances by cultural organizations and community groups. The official transfer to the 24th Commonwealth Games in Ahmedabad in 2030 will also take place during the event. The ceremony will be headlined by Scottish rock band Simple Minds. Moreover, Bems, Kami Barnes and Sandy Tom will also perform, while Australian singer Delta Goodrum will be making her third appearance at a Commonwealth Games ceremony. From India, Rashmika Mandanna and Shankar Mahadevan will headline India's cultural showcase in Glasgow. Doordarshan will broadcast the ceremony live for the fans. Chirag Jha from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi launches 100 Freak nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India's GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes. Rainfall intensity decreases in Kerala, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the Centenary 2030 edition. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वजीराजम नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुल्कगीर मुहिम का आगाज किया। वजीराजम ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। SBI की तहकीक में रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान भारत की GDP की शरह तरक्की के मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंभों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया के मदुरा जलजीरे से कुछ दूर

रेडियो कर जोरा रहा तुम अलम बिलम कर इलो तुनंग देंगा फान के जुची लो की दो ना पले लके दिफु रोंग टेंग टॉम पेन सार्पिन पो रोंग फार सर्बिन क्रोपी आमोस टोबी अनो क्रो सार्किरी तेरोन लपेन मिर्जर फांग छुपी अलांग ले तुम कर जुगांग तुम अलोन डेने लेंग टी गिलोन सेंगवे जादी था पो बाक्सो अलोन तक चार जुग था नंग ले तुम पेन कर जुगांग तुम लबांग सो अलोन